0: सुधार हजुरसम्म ध्यान नथ्यौ
1: ध्यान नथ्यौ भने त्यहाँ अर्जुन कौशल
2: हेलो एभ्रीबडी आई एम अर्जुन कौशल

0: हाय बेबी।
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रहे मतलब?
1: मींस आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

0: ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਣੀ ਰਹੇ।
1: ਯੇ ਕੀ ਹੋਗਾ?
2: What happened?
1: ਪਾਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਗਾ।
0: ਅਬ ਕੀ ਕਰੇਂਗੇ? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनुपर्ने, धेरै पछि के आज त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई, दुःखमा थिए आमै।
1: ए आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख केही कथा सुनाउँछु।
1: लो सुना सुना।
0: ल

0: छ।
1: गुणस्तरीय मर्मतको लागि सम्झनुहोस्
0: नित्य इलेक्ट्रोनिक्स गोर्खा नगरपालिका छ, आँखा अस्पताल अगाडि मोडैमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98576-24210 98576-24210।
2: You're watching Bodhi FD, lights, camera and satisfaction.

आगन आगन दुली दुली सानो रङ्गी तारो मोती जस्तो चमल मोती मग्न धरी।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: ओए दौड़ी ना, अच्छी तो दौड़ी चुकी। जमाई लगाने पर चांस आ रहा है, अच्छी तो दौड़ी आल ना।